0: किमी किमी लापरवाही सुनो चाउसो खेल के मा दुख जी दिन के को ठेल नेला की नाते जन धनी नी खेपा छुकी ताउदु हो खोकाई
1: नान्थर नाम्रो लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हुने ढाल्ने छ अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसन गिलिए
0: गेछो छानेला खोरे ल चाउसी पोदिए होरिदे तरिम गाई गेज नेके लाइजु अब नजिरे बने गेम ये ल गेज नेके नालाई औले नायो के नाइए
1: वन जंगल छ जुलिसी हो गेम बारी ल बाली नाली कुचुला चुली यात्रा रस चाउसो छिनी ने चाउसो सैले के खेले या
0: वन जंगल नेला दिगे माइए नेला अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सजग विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: समुदाय को लागि सामुदायिक रेडियो जलजला एफएम 96.4 MHz। जलजला ट्रैक चेक। यति बेला हाम्रो स्टुडियोको घडीमा बेलुकीको 5 बजे।
1: यस टाइम चेक का प्रायोजक दीर्घायु हस्पिटल प्राली तिलोतमा 5 मणिग्राम रूपन्देही।
2: के तपाईलाई गर्दन वा कम्बरमा नसा च्यापिएको, प्यारालाइसिस, मुख बाङ्गिने, एलर्जी, छाला रोग का समस्या, पुराना रुगा खोकी, टन्सिलाइटिस, अनिद्रा, माइग्रेन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, हाथ खुट्टा घुड़ा कुहिना पोल्ने वा झमझमाउने, हड्डी खिएर हाट जोड्ने, मांसपेशी वा बास को दुखाई, यूरिक एसिड बढेको, महिनावारी को दुखाई, यौन समस्या, बाँझोपन, मुत्रोपन, अरुचि, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप जस्ता समस्याहरू छन् भने आधुनिक मेसिन को साथ में सम्पूर्ण सेवा को उपचार एकै ठाउँमा गरिन्छ। प्राकृतिक चिकित्सालय दीर्घायु हस्पिटल प्राली तिलोत्तमा 5 मणिग्राम रूपन्देही। फोन नम्बर 0175624959 र 98645 78232।

0: दिपेन्द्र म्यूजिक एंड फोटो स्टूडियो पहले को स्थान बाट 600 मीटर पूर्व मुस्कान टेलर को ठीक अगाड़ी लोटस स्कूल को ग्राउंड नजिक महेन्द्र नगर रोड में सरे को सब ग्राहक वर्ग सहर्ष जानकारी कराद
1: दिपेन्द्र म्यूजिक एंड फोटो स्टूडियो को धमाका धमाका नया तथा पुराना लोक तथा दोहरी आधुनिक पॉप रिमिक्स का साथ ही हिंदी फिल्म गीत हिंदी रिमिक्स र हिंदी चलचित्र का गीत तपाई को रोजाई का जुनसुक गीत डाउनलोड कर पड़े में तपाई ने समझने पड़ने एक मात्र म्यूजिक कर्नर दिपेन्द्र म्यूजिक एंड फोटो स्टूडियो भैरव नगर रोड अक्सरिया कैलाली
0: साथ ही संपूर्ण मोबाइल का चार्जर एयरफोन पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड एनसेल को सिम सब प्रकार का रिचार्ज कार्ड कलर फोटो कपी लेमिनेशन र अर्जेंट फोटो 5 मिनट में उपलब्ध कराइन्छ संपर्क दिपेन्द्र म्यूजिक एंड फोटो स्टूडियो मोबाइल 9848462393 9848412297

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।